श्रोताओं, अभी आपने सुना एहसान लॉय के आवाज़ में ट्विस्टेड इस फिल्म का गीत। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं मैं तेरा हीरो इस फिल्म से, आवाज़ प्रीतम और आतिफ असलम की।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है CKYC ID।
1: CKYC मतलब
2: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका करते हैं स्वागत। और अब आपको सुनवाते हैं प्रेम रतन धन भाई इस फिल्म का गीत हरदीप कौर, विनीत सिंह और अनमेशा की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हरदीप कौर, विनीत सिंह और अन्वेषा की आवाज़ में प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा पटियाला हाउस फिल्म से सुनवाते हैं।

श्रोताओं, संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त। FM बैंड 101.3 MHz पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं और श्रोताओं, ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के अंतर्गत उमंग का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
1: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
1: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
1: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी,
0: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
1: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओ एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
1: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा
1: जी। हाँ, कल नहीं परसों नहीं लेकिन आज।

0: ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
1: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी

0: समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, रुको, रुको। मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण

0: पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगों के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा माँ,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
4: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा माँ,
2: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
4: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
5: हाँ गौरा माँ, हाँ गौरा माँ,
2: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हा

0: नहीं कटने देंगे,
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
2: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान।
5: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे क्या कर रहे हो?
7: मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू, मारो
6: पेड़। अरे भाई कौन है? रुको, इस तक चिपक जाएंगे पेड़ से।
8: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
6: अरे कहां से?
7: दो मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू, काटो पे।
6: हम पेड़ों से चिपक जाएंगे, हम पेड़ों से चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
8: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम, एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
1: नहीं लगाने देंगे।
8: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
7: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
5: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
5: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
2: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
5: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
8: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के

0: उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के अंतर्गत उमंग को। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं और श्रोताओं अब समय है विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।

रखता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादे हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

से ज्यादा समझा है तुझको, मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूँ या दिल जानता है।

जान, मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है जिस

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं तक, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए।

0: पैसे दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज़ में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज़ में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज।

0: आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत
1: याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में, चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है, और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार, आशा भोसले की आवाज़ में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज़, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है, और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नज़र से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता, आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं, और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है, या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि

एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बने हैं, बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल सा, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं? यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए? ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है? बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्मों नेम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस

हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियाँ, शैतानियाँ और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है, जहाँ हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है, और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है बाली उम्र में। किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है, और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है शैशव काल की मुस्कान। किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल, विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज कि एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहाँ शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई? जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली, ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीज़ों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए, ये तो बड़ी गलती कर दी थी, तो पिटाई तो शायद

0: बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूं, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी, अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था, सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खो खो, धूम खेले हैं, क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे, क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है, सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन, आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर, बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।
1: मन के

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे। दो कलियां फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो। तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं। तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली, तू स्कूल ही गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना, खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, वो मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं।

करनी चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर एक साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई। बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा। माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी कौशलता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज़्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में, किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भोगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी बर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे TVS चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है, और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब बारूद सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था। सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध दुर्गंध बढ़ जाती थी। वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे, और ₹50 बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में

भोजन के समय मैं उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौढ़ावस्था इस उम्र तक आती आती यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी। एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गईं, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा। ऐसे होते हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया और स्कूल की टीचर को भी बता दिया। और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सब किसे कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राहें गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी। बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज़ किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि 16 वर्ष को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं। बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है।

0: बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम बम बम चिक चिक।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता। आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

पहला गीत आप सुनेंगे जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आरडी बर्मन का संगीत है, आवाज कुमार सानू की है और फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। वहीं दूसरी ओर श्री मोदी ने और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक साझा लेख लिखकर कहा है कि दुनिया को संकीर्ण सोच छोड़कर आपसी सहयोग की राह चुननी होगी। लेख में भारत के दो बड़े लक्ष्यों का जिक्र है, इसमें 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की।

0: बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केन्द्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। पिछली बैठक पिछले साल जून में वाराणसी में हुई थी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम के मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। डीजीपी कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और हॉक फोर्स के जवान इस सम्मान से नवाजे गए। हॉक फोर्स ने आधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी के दम पर नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। किसानों को 2,585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब तक किसानों को 10,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। इससे ट्रेनें समय पर चलेंगी और यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ने के अपने पुराने आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए। अदालत ने बुजुर्गों, बच्चों, यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। आज सोने और चांदी दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए महंगा होकर 1.59 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2181 रुपए उछलकर 2.70 लाख रुपए हो गए हैं। प्रदेश में कल भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में पारा 46.8 डिग्री पहुंचा, जो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। नौगांव में 40, राजगढ़ में 45.5, रतलाम में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। आपको समाचार संक्षेप में। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आगर मालवा में जिला पोषण बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में कुपोषण मुक्ति अभियान, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई। कटनी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मॉनसून पूर्व तैयारियां तेज कर दी हैं। शिवपुरी में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित 10 दिवसीय खरीफ पूर्व कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा

0: सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब

0: वैश्विक भूराजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, तपती हुई दोपहरी कि जब जिंदगी कुछ पल फुर्सत की तलाशती है, किसी गीत की छांव तले सुस्ता लेना चाहती है, इन पलों में हम लेकर आए हैं भावनाओं से सजी वो पोटली जिसमें हैं आपकी चिट्ठियां, आपके शब्द, आपकी फरमाइशें। तो आइए कुछ पल सुरों के साथ चलते हैं।

कुछ पल सुकून के साथ गुजारते हैं, कुछ पल आपके साथ गुजारते हैं, मिलकर गुनगुनाते हैं आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत कुर्बानी फिल्म से, आवाजें कंचन, मनहर और इंदिवर आनंद की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश आप सबकी है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। निम्बोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोल वाघ। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। देवास से राजीव अग्रवाल। ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। ये चिट्ठी आई है बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।

और अब आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। अनुरोध आप सबका है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये चिट्ठी आई है डोंडी लोहारा दुर्ग से। लिखने वाले श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार, प्रभा देवी। सारणी जिला बैतूल से इसी गीत को पसंद करते हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। शाजापुर से मधु राजावत, एमएम राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया हुआ है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत।

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।

और अब आइए जूली फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन। अनुरोध आप सबका है। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जमुना देवी साहू, राजू और लल्ला साहू, सौगा धमतरी से फणीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र कुमार चंदन। ये खत आया है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिल्दा से इस गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा, प्रिया, ओशीम और सोमिन कुमार चंद्र। ये खत आया है ग्राम अमलेश्वर से। लिखने वाले श्रोता हैं डोमन ठाकुर,

सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। दुनिया ये तसव्वुर हम आबाद नहीं करते, याद आते हो तुम खुद ही हम याद नहीं करते।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

और अब आइए सुनते हैं नूरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। पसंद आप सबकी है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई कि तेरा नाम लेकर पुकार लूं।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे।

0: की सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाटी

0: ಸಹೇಲಿ
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला
1: जी।
2: है ना। विषय बता दें।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं है ना?
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले

0: में एक गांव है रोपरखेड़ा, वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
1: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है, और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
0: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
1: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
0: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती हैं।
1: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
0: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
1: योग्यता
0: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती है तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है, दोनों के मुंह से।
0: बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना? तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम, मुलाकात हमारी नहीं हुई है लेकिन ऐसा लगता है कहीं

0: कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है,
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो, होना भी चाहिए।
1: जी
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना, इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है। उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है।
1: क्या
0: तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा
1: तारा
0: है, क्यों
1: है।
0: नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते
1: देखते
0: हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है
0: मिलती
1: नहीं।
0: है ना।
1: जी

0: मनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है,
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में
0: हाँ,
1: तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछतावा हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना, तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।

0: सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े। और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताएं, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी

0: जाती है और कभी कभी उपहार में मिल
1: पर
0: जाता
1: ऐसा
0: है।
1: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
0: बिल्कुल,
1: बोध।
0: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहां भी
1: वो
0: काम आई
1: आंख
0: है।
1: का तारा होते हैं ना बच्चे।
0: हाँ इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था, अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था, मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपया बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था, वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा, BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था, हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी, हाँ इधर दो नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है, ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का, ये वो इस समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त
1: पूरा
0: तरीके
1: लेखा
0: से
1: जोखा लिख दिया,
0: और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा
1: पूरा
0: लग रहा है
1: चित्र आ गया।
0: खराब बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताज़ा की।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है, दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था एक स्कूल होने के चलते, हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको ये गिफ्ट देना होगा।

0: कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: यार शब खैर, और मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौट

0: तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉयड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे

0: इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: अरे नहीं
0: कि
1: भैया, आपकी
0: वो
1: जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूं, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे, और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी, जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई, तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो। जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिल
1: घर में
0: चुकी
1: ही
0: थी,
1: मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू
1: जी
0: हुआ।
1: जी
0: अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए,
1: जी
0: तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा, और कहते ना, पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया, और कहते ना, पब्लिक आई में किसम से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना, गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया,
0: अच्छा
1: और
0: जी,
1: लता जी भी वहाँ थी, और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी, उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने, वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई, और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
0: वाह वाह वाह भाई,
1: तो
0: ऐसा
1: कहां से कहां ये बात देखिए
0: है,
1: पहुंच
0: आपने
1: गई।
0: जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ,
1: जी
0: लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये
1: ये तो
0: गाना।
1: आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, और यहां से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
0: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई,
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी, और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग

0: पर आधारित है गाना, और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, इस समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि
1: इंस्टेंट
0: बहुत
1: फूड की तरह है।
0: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
1: जी हाँ,
0: हाँ
1: इतना पेशेंस पे
0: जी
1: थे लोग,
0: जी जी
1: और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें
0: और जो
1: किसी गाने
0: इंग्लिश में
1: को।
0: कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था,
1: क्या बात है।
0: जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहां म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: जी जी
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने
0: जी
1: के
0: जी
1: बारे में बताया है
0: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे, और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं
0: और
1: और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
0: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने, इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए, उनको है कि नहीं?
0: सुना। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो
1: नहीं,
0: बताइए।
1: क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बन बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं
0: बिल्कुल सही
1: मजेदार?
0: बात।
1: और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे, बोले आशा तुम यहाँ? फौरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है,
0: और आपकी ये दोस्ती उतनी ही
1: अभी भी
0: पुरानी है?
1: कायम है।
0: अच्छा,
1: जी हाँ
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
1: बिल्कुल
0: फील्ड के
1: बिल्कुल,
0: लोग
1: वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूं कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है,
1: जी
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
1: जी
0: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए।
1: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतू रंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना
0: अच्छा,
1: मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है,
1: जी
0: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी रख दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा,
1: हाँ
0: वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा।
0: और बहुत देखिए ऐसा है
1: चलो
0: कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे, वो
1: बहुत
0: कानों में
1: बहुत बहुत
0: रस
1: शुक्रिया।
0: हमेशा घोलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका
0: जी
1: मकसद पूरा होता है,
0: जी
1: और ये आना चाहिए तभी
0: जी
1: आके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
1: अच्छा,
0: थी?
1: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी।
0: जी
1: तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मूरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो
0: जी
1: कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने

0: रहे। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी, वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे,
0: पूछिए।
1: लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम
0: जी
1: बात करें,
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस
0: सबके
1: किस्म
0: मन,
1: की
0: सबके
1: चीज़
0: दिल
1: हुआ
0: में ये
1: करती
0: बात
1: थी।
0: होती है।
1: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते हैं ना टॉप पे रहा काफी दिनों तक, और यही नहीं जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में
0: थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना
1: जी
0: करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊं, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है, कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा।

नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, रामनारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं,
1: जी
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं, और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी
0: बहुत
1: बात है ना।
0: है।
1: और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है
1: बिल्कुल
0: और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की एक परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा अच्छे से मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूं कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में।

0: और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते हैं ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहां तुम्हारी खुशी वहां मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया,
1: जी
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन-कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ, और
0: अच्छा,
1: बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं, तो समझे ना। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
1: जी
0: तो वहां कौन सी जगह जहां आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊं कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग तहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, और हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही है, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला एलपी म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो एलपी का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए।

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में
1: ढेर
0: तो
1: सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुसलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था, और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेलुलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बजे है। लीजिए अब सुनिए हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, युवावाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम युवावाणी आज के स्वास्थ्य सलाह के साथ। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आईबीडी डे की। यह दिवस हर वर्ष 19 मई को मनाया जाता है ताकि लोगों को आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज के बारे में जागरूक किया जा सके। दोस्तों, आईबीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आंतों में सूजन आ जाती है। इसके कारण पेट दर्द, बार बार दस्त होना, कमजोरी, वजन कम होना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। मुख्य रूप से इसमें दो बीमारियां शामिल होती हैं, क्रोहन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान, तनाव और अनियमित दिनचर्या युवाओं की सेहत पर असर डाल रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। समय पर भोजन करना, जंक फूड कम खाना, पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम करना हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। दोस्तों, अगर लंबे समय तक पेट से जुड़ी कोई समस्या बनी ही रहे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जागरूकता और सही इलाज से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और अब बारी है कार्यक्रम में पहले मनोरंजन गीत की।

0: श्रोताओं, गीत से पहले हमने आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी की बात की और अब बारी है आज के दिन की। आज का दिन है मंगलवार और आज होता है हमारा क्रम मेरे मोहल्ले का होनहार। और आज हमारे साथ उपस्थित है मेरे मोहल्ले के होनहार क्रम में ग्रीष्मा मटलानी और उनके माता पिता। दोस्तों, ग्रीष्मा मटलानी ने 12वीं CBSE परीक्षा परिणाम 2025-26 में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने 97.80% प्राप्त कर पूरे बालाघाट जिले में प्रथम स्थान यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर की पदवी प्राप्त की है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं ग्रीष्मा का और उनके माता पिता का।
1: थैंक यू सो मच।
2: धन्यवाद।
0: इस बेहतरीन सफलता की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ मैं। ग्रीष्मा, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माता पिता को भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो ग्रीष्मा, सबसे पहले हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आप हमारे युवा श्रोताओं को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना।
1: नमस्ते, मैं ग्रीष्मा मटलानी हूँ। मैं ओजस ग्लोबल स्कूल में क्लास 12th में पढ़ती थी।
0: तो ग्रीष्मा, सफलता के बाद सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आया?
1: जब मेरे को पता चला कि मेरे रिजल्ट्स आए हैं, तब मैंने अपने परसेंट कैलकुलेट किया और तब एक रिलीफ फील हुआ कि हाँ, मैंने जितनी अपनी मेहनत की थी, जितनी मैंने अपनी एफर्ट्स डाले थे, वो रंग लाए और मैंने जितने एक्सपेक्ट की थी मार्क्स, उतने ही मेरे को मिले हैं।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपने ये खुशखबरी किसके साथ शेयर की?
1: सबसे पहले ये मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे 97% बने हैं। देन मैंने अपने पापा को फोन किया कि पापा, मेरे 97.8% आए और मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, और उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई इस बात की।
0: मैं ग्रीष्मा की मम्मी श्रीमती भारती मटलानी जी से ये पूछना चाहूंगी कि जब सबसे पहले ग्रीष्मा आपके पास आई भारती जी, तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: ग्रीष्मा का रिजल्ट जैसे ही मिला, मैम एक्चुअली मैं वो स्टेयर्स पे खड़ी थी और मैं नीचे खड़ी थी, वो ऊपर रूम में थी, मतलब वो आते आते मैं स्टेयर्स पे नीचे थी किचन एरिया में। जैसे ऐसे हुआ, मतलब

0: उसमें हमारा रिजल्ट आया 97.8% मैंने मतलब फर्स्ट ये वाह निकला मुंह से, वाह बेटा, मतलब वो सीढ़ी से उतर रही थी और मैं चढ़ी, तो दोनों मतलब टकरा से गए। बहुत खुशी हुई, तुरंत माता जी के मंदिर है हमारे घर में, तुरंत जाकर के पहले वहां शुक्राना किया, और इतनी खुशी थी कि मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई, इसने जो इतने एफर्ट्स लगाए थे उसका रिजल्ट मिला। तो बस ऐसे लग रहा था कि वर्ड्स ही नहीं थे कि माता रानी का शुक्राना कैसे करूं, बस प्रार्थना यही की कि आगे भी ऐसी ऐसी सफलताएं माता रानी के आशीर्वाद से मिलती रहे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ग्रीष्मा के पापा से अब बात करना चाहूंगी जिनका नाम है श्री प्रदीप कुमार मटलानी। तो सर आप बताइए कि आपके पास जब ग्रीष्मा का फोन आया तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे और ये खबर सुनकर आपका क्या रिएक्शन था?
2: मैडम मैं तो शॉप पे था, अब इनका फोन आया कि भाई ग्रीष्मा पास हुई है। पहले तो ये सुनाई दिया मेरे को पास हुई, बहुत अच्छे, फिर परसेंटेज बताया कि भाई कितने परसेंट आए, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब जैसे जैसे समय बीता, फिर आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद धीरे पता लगा कि टॉपर हो गई है ये, बाद में न्यूज मिली कि भाई जिले में सबसे टॉप किया है इसने, तब तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर बधाइयों को आता लगा, लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा था।
1: जी तो ये तो बहुत गर्व की बात ही है कि इतने अच्छे परसेंटेज के साथ ग्रीष्मा ने बालाघाट का नाम रोशन किया है। तो ग्रीष्मा अब आपसे बातचीत तो हम आगे जारी रखेंगे, पर सबसे पहले हम श्रोताओं को आपका पसंदीदा गीत सुनवाएंगे, तो बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है?
3: मेरी मम्मी और मेरा दोनों का फेवरेट है गहरा हुआ, वो गाना बहुत पसंद है मुझे।
1: चलिए तो हम सुनते हैं ग्रीष्मा का पसंदीदा।

0: गीत से पहले हम बात कर रहे थे ग्रीष्मा से और उनकी सफलता को लेकर के। तो ग्रीष्मा, आप बताइए कि आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा राज क्या था? आपकी मेहनत या टाइम मैनेजमेंट या आपका आत्मविश्वास?
1: आत्मविश्वास सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की है मेरी, कभी भी मेरे को प्रेशराइज फील नहीं करवाया। जब भी मैं उनसे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी टेंशन रहती थी शेयर करती थी, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया। प्लस टीचर्स का गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। वो भी आई एम थैंकफुल कि मेरे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने हमेशा हर स्टेप पे मुझे गाइड किया है।
0: जी, तो आपने जैसे कि कहा कि आपके पेरेंट्स ने और आपके टीचर्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो चूंकि आपके टीचर्स तो अभी यहाँ नहीं है पर पेरेंट्स हैं, तो मैं पेरेंट्स से ही जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से सपोर्ट किया।
2: खाने पीने में देखा जाए तो मैम, वो तो एज अ मदर मैं इसका हमेशा ख्याल रखती हूँ, बट एग्जाम टाइमिंग में थोड़ा ओवर प्रोसेसिंग होना जरूरी था। साइड फूड्स मैं इसको अलाउड नहीं करती थी एट टाइम, और जितने हो सके हेल्दी फूड देती थी। फुल टाइम टू टाइम मैं इसके खाने का ध्यान रखती थी। इसके अलावा एजुकेशन मैटर पे देखा जाए तो मैं, क्योंकि खुद कॉमर्स फील्ड से हूँ मैम, तो मैं ऐसे टाइम टू टाइम इसके कोर्स का, इसके सिलेबस का, इसके क्वेश्चन पूछती रहती थी, बेटा आपका कितना हुआ है क्या। ऐसे नहीं ओनली एग्जाम टाइमिंग में, मैं पूरी ईयर भी इसका ऐसे रहता था कि अभी आपका कितना हुआ है, क्या है, कितना बचा है, आपको लास्ट टाइम में पैनिक नहीं हो रहा है, आप डेली टू डेली कुछ ना कुछ वर्क करते रहिए। ये सपोर्ट मेरा इसके साथ रहा। और कभी कभी मैं भी इसके साथ बैठ जाती थी और बुक्स वगैरह देखती थी, और मैं बोलती थी आप बोलो मैं चेकआउट करती हूँ। इस टाइप का जो सपोर्ट रहा है, जितना मेरे लेवल पे बन सकता था मैंने इसको किया है।
0: और सर आपका क्या सपोर्ट रहा है?
3: मैम पढ़ाई के लिए तो पूरा सपोर्ट रहा है, जहाँ भी इसने एजुकेशन मांगी भी टीचिंग के लिए, कोचिंग के लिए
0: जी।
3: तो वो पूरा इसके मन के मुताबिक ही हमने किया है। जहाँ भी इसने कहा भाई यहाँ पढ़ना है मेरे को, तो वहीं पढ़वाया उसको, जैसा भी करना चाहा, तो वो पूरा फ्रीडम दिया है उसको उसके मन मुताबिक कि बेस्ट से बेस्ट मिल सके हमको।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रीष्मा आप बताइए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपने साल भर पहले से शुरू कर दी थी या एग्जाम के कुछ महीने पहले?
1: जब मेरी क्लास 12th की जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना चालू किया था। अच्छा। जो डेली पढ़ाया जाता था घर पे आके उसको एक बार वापस पढ़ती थी, ताकि दिमाग में बैठ जाए वो चीजें, और लास्ट में जब एग्जाम्स आए तब मैं पैनिक ना हो, टेंशन ना हो कि हाँ मेरा इतना सारा कोर्स बचा है। कभी टेंशन फील नहीं हुआ था मेरे को इस कारण।
0: अच्छा, तो आपका रोजाना रूटीन किस तरह का रहा है?
1: मैं स्कूल से आती थी, देन थोड़ी देर खाना वाना खाके मैं कोचिंग जाती थी। जब कोचिंग में पढ़ के वापस आती थी, फिर वापस मम्मी के साथ बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी और फोन टीवी थोड़ा बहुत देखती थी। देन जब मैं पढ़ने बैठती थी तब मैं कंटिन्यू 2 से 3 घंटा पढ़ती ही थी, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था मेरे।
0: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट क्या रहा है?
1: फेवरेट मेरा अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स रहा है, क्योंकि उसमें बहुत प्रैक्टिकल चीजें जानने को मिलता है।
0: कोई और सब्जेक्ट भी था जिसमें प्रॉब्लम फेस की आपने?
1: मैंने अकाउंटेंसी में पहले बहुत प्रॉब्लम फेस की थी कि नंबर्स रहते थे और पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता था, लेंथी आता था। बट मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि बैठ के कंटिन्यू 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता पेपर कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो पेपर करते टाइम जो स्पीड रहती है वो मैनेज हो जाएगी।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। और मैं एक बार फिर से आपके माता पिता

0: मैं ये जानना चाहूंगी कि आजकल के पेरेंट्स को आप जानते ही हैं कि एग्जाम आते हैं या उनके स्कूल स्टार्ट होते हैं तो पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों पर दबाव बनाना चालू कर देते हैं कि नहीं आपको पढ़ना ही है, इतने परसेंटेज लाना ही है। तो आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कि कुछ माता पिता कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई अपनी नहीं कर पाए पर बच्चों को करा रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे कि उन्हें बच्चों पर दबाव डालना चाहिए या नहीं?
1: नहीं मैडम, दबाव तो नहीं डालना चाहिए। अब नीचे ऊपर होता है, इसके भी पहले स्कूल में थी तो मार्क्स कभी कम नीचे ऊपर हुए हैं
0: जी।
1: तो हम लोगों ने बस ये समझाया इसको कि भाई अब देखो ये हो गया तो हो गया, लेकिन आगे चल के ऐसा ना हो, थोड़ा कहाँ कमी कहाँ लैकिंग हो रही है वो थोड़ा ध्यान रखो इसको और उसको सॉल्व करो धीरे धीरे धीरे धीरे करके, फिर वो वापस आई। नीचे ऊपर सबके साथ होता है, अब भविष्य में ध्यान रखें इस चीज का, तो आगे उसने फिर ध्यान रखा उस चीज को और मेहनत करी। प्रेशर कुछ नहीं दिया हमने उसको कि भाई आपको पढ़ना है इतने घंटे पढ़ना है, अभी नंबर सही नहीं आए तो अब आगे चल के आपको एग्जाम के टाइम में इतना घंटे पढ़ना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया। नॉर्मली पढ़ती थी, जैसे उसका 2-3 घंटे पढ़ने का रूटीन है वैसे ही पढ़ती थी, लेकिन रेगुलर पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन पढ़ा फिर 4 दिन छोड़ दिया बीच में, ऐसा नहीं, कंटिन्यू पढ़ती थी।
0: और ये बात भी बिल्कुल सही कही कि लगातार अगर कोई पढ़ता रहे और बीच में अगर छोड़ दे तो फिर पढ़ाई फिर छूटी जाती है। और आपने तो जैसे बताया कि आपने किस तरह उसके खान पान में भी सपोर्ट किया, थोड़ा डांटा भी।
2: जी मैम बिल्कुल, आजकल जो मोबाइल है उसके प्लस पॉइंट्स हैं मैम, पर उसके माइनस पॉइंट्स भी बहुत हैं। तो मैं ऐसे कहती थी कि जैसे ये मोबाइल पे बैठ जाती कभी, मैंने कहता था ठीक है आप थोड़ी देर बैठो, पर जब मुझे लगता था कि ये मोबाइल कुछ टाइम रेशियो ज्यादा है इसका तो मैं इसे बरोबर डांटती थी कि बेटा आपको अगर कुछ करना है तो हर चीज की एक बैलेंसिंग चीज बरोबर रहती है, आप उसको बैलेंस बना करके रखिए। मैं देखी हूँ अदर पेरेंट्स को भी जो काफी पहले से अपने बच्चों को, पर मेरे दोनों टचवुड दोनों बच्चों की तरफ से भी ऐसा कुछ डिमांड नहीं रहती है कि हमें मोबाइल चाहिए। मोबाइल अभी भी मैंने लास्ट ईयर से ही दोनों बच्चों को दिया है और हम नाइट में नहीं देते हैं बच्चों को मोबाइल, अपने पास रख लेते। तो कभी ऐसे जिद की है कि हमको चाहिए तो उस चीज पे मैंने इसको बरोबर डांटा है।
0: सही कृष्णा, ये बात
3: बिल्कुल, ये बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेक्शन है, ये कई बार मैंने भी फील किया है। तो जब भी मैं मम्मी मेरे को बोला करती थी तो मैं रख देती थी फोन और फिर मेरे को रियलाइज होता था कि हाँ अभी पढ़ने का टाइम है, अभी नहीं चलाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया से और पढ़ाई के बीच में आपने काफी बैलेंस बना के रखा है इसका मतलब। और एग्जाम्स के दौरान कुछ घबराहट, आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस फील हुआ?
3: पहला पेपर देने गई थी मैं, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत नर्वस फील कर देती हूँ एग्जाम के पहले, बट फिर खुद को काम किया, अपने आप को समझाया कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि मेरा एग्जाम कभी नहीं बिगड़ेगा, अच्छा ही जाएगा। और काम होके एग्जाम देते हैं तो और अच्छा जाता है वो एग्जाम, खुद को रिलीफ फील होता है कि हाँ बहुत अच्छे पेपर गया है, मेहनत सफल होगी ही।
0: बिल्कुल, आप दोनों भी गए थे सेंटर इसे छोड़ने के लिए?
1: हाँ, हम तो पर पेपर गए हैं उसको छोड़ने के लिए, अकेली अच्छा। कभी नहीं गए, हम साथ में गए हैं उसके पेपर,
0: सही बात
1: पेपर
0: है। मतलब पेरेंट्स साथ में जाते हैं सेंटर तक तो एक हिम्मत बनी रहती है बच्चों को। बिल्कुल, तो सर अब आप बताइए कि आपके पसंद का कौन सा गीत है जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।

0: गीत से पहले हम ग्रीष्मा के माता पिता से और ग्रीष्मा से बातचीत कर रहे थे और आगे भी हम अपनी बातचीत को लगातार जारी रखते हैं। और सबसे पहले एक बार फिर मैं ग्रीष्मा से जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह का पैटर्न यूज किया अपनी पढ़ाई के लिए, कोई खास जैसे नोट्स बनाना, रिवीजन, टाइम टेबल या मॉक टेस्ट, समथिंग कुछ?
1: अकाउंटेंसी में जैसे मैंने परफेक्ट स्कोर किया 100 out of 100, तो जो मेरे टीचर है मिस्टर अंबर मंगे सर, उन्होंने हमेशा मेरे को यही बोला है कि नोट्स बनाया करो, नोट्स बहुत टाइम बचाता है। पेपर के पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लेते हैं ना, तो बहुत हेल्प होती है। और जो बाकी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, मेरे जो दूसरे टीचर हैं सीए पवन मंगे सर, उन्होंने हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स इतने क्लियरली समझाया है और बोला है कि जब भी कोई चीज समझाता हूँ उसको अंडरलाइन करके रखो, ये चीज इम्पोर्टेंट है। एंड डेफिनेटली वो चीज पेपर में आई है, तो मैं वैसी स्ट्रेटेजी बिल्कुल उनके मुताबिक ही फॉलो किया है मैंने।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दोनों मेंटर्स ने आपकी इतनी हेल्प की। और बताइए ग्रीष्मा, कि आपके लिए कौन सा एक आइडल पर्सन है, ऐसा कौन सा आदर्श जिससे आपको प्रेरणा मिलती है?
1: प्रेरणा तो मुझे मेरे मम्मी पापा से ही मिलती है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने अपने लेवल पे जो उन्होंने अचीव किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित होती हूँ। एंड मेरे जो टीचर्स हैं वो भी सेम बैकग्राउंड से हैं ऑफ कोर्स, तो उनसे भी बहुत गाइडेंस मिलती है, उनसे भी बहुत सीख लेने को मिलता है कि कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए तो उसको सामना करना चाहिए एंड बहुत इजीली हम लोग अपने लक्ष्य को सफल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आगे आप क्या सोचा है, आपने क्या करना चाहेंगी आप?
1: मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही हूँ अभी भी।
0: ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार फिर मैं आपके माता पिता की तरफ चलूंगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया है, जो आजकल के पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर किस तरह से दबाव प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर जो है उनका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे अभिभावकों को आप क्या संदेश देंगे?
2: मैं बोलना यही चाहूंगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे सपोज हो सकता है कि ग्रीष्मा का ये एग्जांपल लेकर के बोल दें कि देखो उन्होंने इतना परसेंट बनाया है, आपको भी वैसे परसेंट लाने हैं, या किसी अदर का भी जैसे परसेंट टारगेट करके कि आपको इतने परसेंट लाने ही है। सब कुछ परसेंट से नहीं होता है मैम। अभी ग्रीष्मा ने परसेंट अच्छे किए हैं पर अभी इसकी बिगनिंग है, तो इसको अभी और अच्छा करना है, तो ग्रीष्मा का भी ऐसे इसकी परसेंटेज की भी और कोई ब्रेक कर सकता है। तो ऐसा नहीं रहता कि टारगेट हमको परसेंटेज, मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी कि परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, हमको अपने बच्चों को ऐसा सपोर्ट करना है कि जिस भी फील्ड में वो गए हैं उस फील्ड का उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि उनकी जो डेस्टिनी है उसको अगर हमको अचीव करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। जितना हम बच्चों को फ्री छोड़ेंगे उतना वो अपना बेटर दे सकते हैं। किसी भी चीज को हम टाइट करें या किसी भी चीज में हम फोर्स लगाए तो वो डेफिनेटली ब्रेक होती है, तो हम उसको जितना स्मूथली हैंडल करें। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगी अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें, बहुत फ्रेंडली रहना बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। वो हर चीज शेयर करते हैं तब हम उनकी दिमाग का क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। वैसे कहा जाता है कि पिता नारियल की तरह होते हैं, बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। तो मैं ग्रीष्मा के पिताजी से पूछूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा कि बच्चों के साथ फ्रेंकली रहना है, तो एज अ फादर, एज अ पिता, आप मतलब क्या संदेश देंगे कि बाकी के पिताओं को क्या करना चाहिए?
3: नहीं, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए। आके कभी भी घर पे मिलें तो उनसे बातचीत करें, ऐसा ना उनको अकेला छोड़ें, बातचीत जरूर होनी चाहिए आपस में। और उससे क्या है, वो बच्चे खुलते हैं, अपने जो समस्याएं हैं वो बताते हैं अपने को, तो अपने को पता लगता है कि भाई इसके साथ ये समस्या आ रही है। फ्रेंडली रहेंगे तो वो पूरी समस्या अपनी हमारे साथ शेयर करते हैं और हम भी उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं उसमें।

0: टू टाइम, तो वो बहुत जरूरी होता है फ्रेंडली रहना है मेरे ख्याल से, तो बच्चों को तभी फ्रीडम मिलती है और वो फील करते हैं अच्छा और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं फिर वो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब एक बार फिर वक्त हो चला है मनोरंजन का, और इस बार मैं जानना चाहूंगी ग्रीष्मा की मम्मी से कि वो कौन सा गीत सुनवाएंगी हमारे युवा श्रोताओं को।
2: मेरे को तो मेरी बच्ची के ऊपर इतना लाड आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है
1: जी।
2: तो मतलब मुझे याद आ रहा है कि कहां इसको मैं इतनी छोटी थी लेके आई थी घर, और अभी इसने इतना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया है, तो उसकी मैं बलाएं लेना चाहूंगी। सॉन्ग है तेरी मैं बलाएं लूं, ये मेरी गुड़िया के लिए है।

0: तो ग्रीष्मा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बच्चे जो छोटे शहरों में या गांव में रहते हैं, इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
1: मैं यही बोलूंगी कि आप मन लगाकर पढ़िए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा भी मन नहीं हुआ है पढ़ने का, बट थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो मैं यही बोलूंगी कि आप कंटिन्यू पढ़िए, कुछ नहीं होता, आपने मेहनत पूरी करे है ना, तो वो आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, हमारी मेहनत जितनी की है तो उतना हमको परसेंट आया। कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग से हर सपना पूरा किया जा सकता है। आज ग्रीष्मा मटलानी ने ये बात साबित कर दी है कि लगन और सकारात्मक सोच से सफलता जरूर मिलती है। युवावाणी परिवार की ओर से और आकाशवाणी बालाघाट परिवार की ओर से ग्रीष्मा को और उनके माता पिता को और उनके मेंटर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद धन्यवाद आकाश,
0: और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आपने अपना समय निकालकर अपने एक्सपीरियंस और अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर की और हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। इस वक्त शाम के 5:32 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शान की आवाज़ में समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी हरीश जराज ने। फिल्म का नाम था रहना है तेरे दिल में। लीजिए अब सुनिए अभिजीत और शेख घोषाल की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है और आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शान वसुंधरदास और केके की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम था कल हो ना हो। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए खूबसूरत फिल्म का ये नगमा अभिजीत और नीजा पंडित की आवाजों में। गीत में बोल है गुलजार के और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त शाम की 6 बजे हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट और मैं हूं आपकी दोस्त रिजवाना खान। इस समय गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। सुबह की धूप हो या दोपहर की लू, हर कोई बस यही कह रहा है अरे भाई कितनी गर्मी है। लेकिन इस गर्मी के बीच भी जिंदगी चल रही है। बच्चों की छुट्टियां, आम का मौसम, ठंडी शिकंजी और शाम की हवा का इंतज़ार। तो आज हम बात करेंगे बढ़ती गर्मी और हम, और साथ होंगे कुछ प्यारे से गीत। धूप इतनी है कि छांव भी जलने लगी है, हर तरफ गर्म हवाएं निकलने लगी है, फिर भी चेहरे पे मुस्कान रखना दोस्तों, ये जिंदगी है हर मौसम में चलने लगी है।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, ये हमें प्रकृति की अहमियत भी समझाती है। कटते पेड़, बढ़ता प्रदूषण और पानी की बर्बादी, कहीं ना कहीं ये वजह बन रही है बढ़ते तापमान की। तो क्यों ना इस गर्मी में हम एक छोटा सा संकल्प लें, एक पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। पेड़ों की छांव अब कम होने लगी है, धरती भी जैसे थक कर रोने लगी है। अगर आज ना संभाला इस मौसम को हमने, तो आने वाली पीढ़ी भी डरने लगी है।

0: माँ, मैंने प्रदेश की नंबर वन वैनगंगा आईटीआई में एडमिशन ले लिया है।
1: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों बेटा?
0: माँ, वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ का रिजल्ट, नौकरी तो पक्की समझो। इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही है। साथ ही विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज, सुनिश्चित छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
1: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट।
2: दोस्तों, गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। ज़्यादा पानी पीजिए, बाहर निकलने से पहले सिर ढकिए और कोशिश कीजिए कि दोपहर की तेज़ धूप से बचें। खाली पेट धूप में ना जाइए।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: दोस्तों, गर्मी की शामें भी अलग ही एहसास देती है। छत पर बैठना, ठंडी हवा का इंतज़ार करना और दूर कहीं से आती कुल्फ़ी वाले की आवाज़, ऐसे मौसम में दिल भी कुछ गुनगुनाने लगता है। तपती दोपहर के बाद जब शाम ढलती है, थकी हुई जिंदगी फिर से संभलती है। एक ठंडी हवा का झोंका क्या आता है, दिल की सारी बेचैनी पिघलती है।

ढलती धूप ने जब आसमान को सुनहरा कर दिया, गर्मी की उस शाम ने मौसम को और भी प्यारा कर दिया। हवा भी धीमे धीमे कोई नगमा गुनगुनाने लगी। सूरज की आखिरी किरण ने दिल को इशारा कर दिया।

0: दोस्तों, मौसम चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पानी बचाइए और प्रकृति से प्यार कीजिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं रिजवाना खान लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई शायरी और शानदार गीतों के साथ। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। इस वक्त शाम की 6:31 हुए। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त शाम के 7:05 होने को है। कुछ ही देर में हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चार राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी रेबीज और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, 22 शहरों में तापमान 44 के पार, अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के सम्मान के नजरिए से भारत और नॉर्डिक देश स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश बढ़ा है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: सम्मेलन से पहले श्री मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात भी की। 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। अब श्री मोदी 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 साल में बस्तर देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। जगदलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2031 तक बस्तर के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर में 200 सुरक्षा शिविरों में से 70 को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा, जहां बैंकिंग, स्कूल, कौशल प्रशिक्षण और वनोपज प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहां कुत्तों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हो और लगातार हमलों से जन सुरक्षा खतरे में हो, वहां ये कदम उठाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश भी जारी किए। साथ ही कोर्ट ने कुत्तों की नसबंदी और आश्रय स्थल भेजने के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60% पर बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती बिजली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वागदेवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि मां वागदेवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

साथ समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने आज भोपाल के आदि भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय अंचल की बच्चियां सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा छोड़ देती थीं। इसे देखते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 बसें चलाई, जिससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं की संख्या 30 से बढ़कर 80% हो गई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में कल प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल के सैकड़ों मेडिकल स्टोर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं है, जिससे नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। हालांकि अस्पतालों के अंदर में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना में सेवा के बाद श्री खंडूरी ने ईमानदार और पारदर्शी राजनीति का आदर्श स्थापित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक श्री खंडूरी का योगदान अमूल्य रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने आज भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का दौरा किया। यहां संस्थान के निदेशक मनोरंजन मोहंती और कृषि वैज्ञानिकों ने समिति को पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 11 सदस्यीय समिति दल के साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी है। पहले सीमा 16,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यानी राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद को एक साल में एक मामले में अधिकतम 25,000 रुपये तक की मदद दे सकेंगे। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन और सामाजिक न्याय विभाग की 252 संस्थाओं की निगरानी के लिए क्वालिटी ऑडिट मोबाइल ऐप लागू किया है। इसके जरिए वृद्धाश्रम, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, विशेष विद्यालय और नशा मुक्ति केंद्रों का डिजिटल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मौके पर फोटो खींचकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे और संस्था को ग्रेडिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों की स्कूल से झिझक खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक ही परिसर में लाने का फैसला किया है। इस को लोकेशन मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी से पहली कक्षा में जाना आसान और सहज हो जाएगा। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में आज पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया, जबकि भोपाल और इंदौर में दोपहर सड़कें सूनी दिखाई दी। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष एसी ट्रेन मां वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ट्रेन को विदा किया। झाबुआ, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कटनी में जनजातीय समुदायों को शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनभागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। आगर मालवा में कल हुई टीएल बैठक में जिला पंचायत सीओ ने जिले में गठित की जाने वाली विभागीय समितियों का शीघ्र गठन कराने के निर्देश दिए। नीमच शासकीय आईटीआई में कल युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा मक्सी दाहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद यात्री बसों की सघन जांच की जा रही है। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। नर्मदापुरम जिले में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आईईसी अभियान चलाया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान साथियों को आपके अपने किसान मित्र नरेश सिंगंधुपे
1: और डॉक्टर डालेश्वरी राणा का
0: नमस्कार। और डालेश्वरी कैसी हैं आप?
1: भैया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी भी बहुत अच्छे होंगे। और अब तो आप जान ही रही होंगी, हमारे सभी किसान भाई इस बात को समझ रहे होंगे कि गर्मी कितनी बढ़ गई है।
1: जी भैया।
0: और अभी तो आज का मौसम जो है थोड़ा थोड़ा हल्का सा बादल उसमें लग रहे थे शाम शाम के वक्त, तो मौसम के बदलने की मतलब संभावना तो है कि जिस तरह से जो अल नीनो का प्रभाव चल रहा है
1: जी भैया
0: उससे थोड़ा सा उसका असर ज़रूर पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो है गर्मी में जो है असमानता देखी जा रही है, कभी 42 डिग्री तक चला जाता है, कभी 39 डिग्री पे आ जाता है, तो इस तरह से ना गर्मी बढ़ रही है घट रही है। लेकिन अभी से फिलहाल अगर 3 दिन से पहले की बात की जाए तो अब तक गर्मी बहुत तेज है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया आपने ने कि तापमान में लगातार वृद्धि मतलब कहाँ है ना कि हो रही है। और अभी जैसे मौसम की बात यदि हम करें है ना, तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि मौसम परिवर्तन जरूर हो, लेकिन यदि अभी इस तरह से यदि हमें गर्मी पड़ रही है तो इसमें हमें कुछ सावधानियों को बरतना बहुत जरूरी है भैया, है ना।
0: बिल्कुल।
1: कि जैसे अब हम घर से निकलते हैं है ना, तो घर से निकलते समय हमें अपने सर पे है ना अपने साथ एक टावेल गमछा अवश्य लें, क्योंकि हमारे किसान भाइयों का जो कार्य होता है वो खेती का होता है। जैसे हमें अभी हमारे किसान भाई खेती के कार्य में खाद वगैरह डालने का कार्य जो शुरू कर चुके हैं है ना, तो ये कार्य भी हमारे किसान साथी सुबह ही करें, सुबह और शाम जहाँ तक हो सके। और फिर भी यदि हमें कुछ आवश्यक कार्यों से यदि बाहर जाना पड़ रहा है तो हम अपने साथ पानी की बॉटल और तौलिया और ऐसी कुछ आवश्यक सामग्री हैं है ना, जैसे हम ग्लूकोज है, ऐसी छोटी छोटी सामग्रियां अपने साथ लेकर चले, जिससे कि हम होने वाले जो तापमान के दुष्प्रभाव से हम बच सकें। क्योंकि भैया होता यूँ है ना कि इन दिनों में ही स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान साथी या हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि ये जो मौसम चल रहा है भैया, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है ना, तो हमारे किसान साथी जैसे ही खेती बाड़ी के कार्यों से निवृत्त होते हैं, क्योंकि हमारे किसान साथियों का खेती बाड़ी का काम थोड़ा इस समय कम है ना, जैसे तैयारी का चल रहा है हमारे कुछ किसान साथियों का, जैसे रबी की कटाई भी हमारे किसान साथी कर चुके हैं है ना, तो हमारे किसान साथियों का काम थोड़ा कम कहें हम खरीफ की फसल की अपेक्षा, तो हमारे किसान साथी जैसे शादी ब्याह के सीजन में जो आनंद लेने के लिए और जाना ही पड़ता है हमारे किसान साथियों को, तो इस समय भैया हमारे किसान साथी भोजन का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि जो गर्मी है तापमान में वृद्धि है तो इससे हमारे किसान साथी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे है ना। तो
0: डालेश्वरी हम आपको यहाँ आपकी बात को हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक गाइड कमर्शियल यानी कि सूचना है किसान साथियों के लिए,
1: हम अपने और किसान साथियों को सूचना दे दें। हाँ।
0: किसान साथियों के साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए सूचना है कि मेधावी छात्र सम्मान समारोह वार्षिक महोत्सव 2026 के अंतर्गत ग्राम टटेकसा तुमसर में ये होने जा रहा है। शिक्षा और प्रतिभा के सम्मान का ये भव्य आयोजन है। 20 मई 2026 शाम 6 बजे से उन मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक श्री ताराचंद जी नागरिकर। कार्यक्रम आयोजक होंगे रविना जितेंद्र गौतम, समाजसेवी और शिक्षा सारथी। सभी ग्रामवासी, पालकगण और गुरुजन सादर आमंत्रित है। आइए शिक्षा का सम्मान करें, मेधावी विद्यार्थियों का अभिमान बढ़ाएं। तो ये सूचना थी हमारे किसान साथियों के लिए, और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किसान साथियों को। ग्रीष्म काल में जो हम जिस तरह से इसको भोग रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी समस्याओं को महसूस कर रहे हैं, उस तरह से ग्रीष्मकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ सकता है, इसको लेकर के एक लोकगीत है, इस लोकगीत के माध्यम से इसको हम जानते हैं।
1: बिल्कुल भैया।

और किसान साथियों, इसी के साथ आज का ये जो चौपाल कार्यक्रम का अंक है, हम उसको यहाँ पर समेटते हैं। और डालेश्वरी, अब हम चलते हैं अपने अगले क्रम किसान वाणी की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में सभी किसान साथियों का और सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नरेश सिंगंदुपे।
2: और मैं हूं डालेश्वरी राणा।
1: जी डालेश्वरी, आज किसान वाणी कार्यक्रम में आप क्या लेकर आए हैं हमारे किसान साथियों के लिए?
2: जी भैया, हम हमेशा की तरह अपने किसान साथियों को, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, है ना, विशेषज्ञों से हम जो बातचीत करते हैं जिसका कि हमारे किसान साथी पूर्ण लाभ लेते हैं, लेकिन हमारे किसान साथियों के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की है जो कि हम आगे अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे, लेकिन हम अभी अपने किसान साथियों की जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो वर्तमान समय है तो इस समय हमारे किसान साथी और कौन से कार्य करें, है ना। जैसे हमने सावधानियों की बात की थी, उसी प्रकार हम कार्यों की यदि बात करें भैया, तो इस समय हमारे किसान साथी जो कि मई का महीना गर्म और शुष्क होता है, इसीलिए इस दौरान हमारे किसान साथी मुख्य रूप से खेती की तैयारी पर ध्यान दें, है ना, विशेष तौर से। जैसे खेतों की जुताई की यदि हम बात करें तो जैसे रबी फसल में हमारे किसान साथी ने गेहूं चना जो बोया था, है ना, तो कटने के बाद हमारे किसान साथी गहरी जुताई करें और उन्हें धूप में क्या कर दें, खुला छोड़ दें, है ना, जिससे कि क्या होगा कि हानिकारक कीट और खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और भैया जो मुख्य काम होता है कि हमें बारिश में, जब बारिश बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है तब हमारा पानी एकत्रित नहीं हो पाता, तब हमें याद आता है कि हमको ये काम पहले कर लेना था, जो कि कौन सा है, मेड़बंदी का, आप समझ गए होंगे। तो खेतों की मेड़ों को मजबूत और ऊंचा कर सकते हैं हमारे किसान साथी कि जैसे आने वाली जो मानसून है ना, बारिश का पानी हम खेत में सुरक्षित रह सके। जब तक कि पानी यदि भराव नहीं होगा हमारी फसलों में तो हमारी फसल मार खाती है, कहा जाता है ना कि जैसे थरा वैसे परहा, तो जैसे प्रकार से हम अपने फसलों का ध्यान रखेंगे वैसे ही हमारी उपज प्राप्त होगी। तो हमारे किसान साथी इन ये काम अभी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। और जैसे फलों की बात करें, है ना, तो हमारे किसान साथियों के घरों में या खेत में आम है, अमरूद है, नींबू है और भी बहुत सारे फलों के पेड़ जो कि लगाए हुए हैं, जिसमें मई महीने में पानी की बहुत आवश्यकता होती है भैया। तो हमारे किसान साथी सिंचाई पर विशेष ध्यान दें, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि पानी पर्याप्त मात्रा न मिलने से हमारे फल क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, है ना। और जैसे हमारे किसान साथी आगामी फसल खरीफ फसलों की तैयारी के लिए भी जुट जाएं अब।
1: बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे किसान साथी इस समय कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और ग्रीष्मकालीन जो फसलें हैं उस पर समसामयिकी क्या कर सकते हैं, चलिए इसी विषय पर हम अपने किसान साथी को सुनवाते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एस आर पटले से ये बातें, जिससे हमारे सभी किसान साथियों को बता रहे हैं और उनसे बातचीत की है हमारे साथी मनीषा गोस्वामी ने।
2: जी भैया,
3: साथियों जिस प्रकार से भी हम देख रहे हैं कि अभी गर्मी में जो देख रहे हैं तापमान अधिक बढ़ गया है और इस समय हम अपने फसलों की देखरेख कैसे करें और अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो किस प्रकार से अभी फसल उत्पादन में लाभ ले सकते हैं, जून माह में जो फसलें हैं अभी या लगनी है या लग चुकी है तो उनके लिए वो अभी क्या कहें एहतियात बरत सकते हैं।
4: किसान भाई इस समय अपनी ग्रीष्मकालीन जो धान लगाए हैं उसकी कटाई में व्यस्त हैं। कुछ किसानों द्वारा धान काट लिया गया है और कुछ कृषक धान काट रहे हैं। अन्य फसलों में उड़द मूंग की फसलें लगी हुई है और सब्जी भाजी कृषकों द्वारा लगाई गई है। वर्तमान समय में बहुत अधिक तापमान है जिसमें उड़द मूंग की फसल एवं सब्जियों में सिंचाई की अति आवश्यकता रहती है। किसान भाई देख लें कि जैसे ज़मीन सूख गई है तो तुरंत सिंचाई कर दें, तो वर्तमान समय में उड़द मूंग में फलियां लग रही है, तो इससे क्या होगा कि वह पानी देने से फल अच्छे लगेंगे और किसान भाई यदि फल अच्छा लगेगा, उत्पादन अच्छा होगा तो उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सब्जी भाजियों में भी जिन किसान भाइयों ने सब्जी भाजी लगाए हैं, कुछ किसानों ने नीचे सरफेस पे लगाए हैं, कुछ किसानों ने कुछ बाड़ियों का उपयोग कर लिए हैं, तार वगैरह लगा लिए हैं, तो निश्चित है कि जो नीचे में फसलें लगती है वो ज़मीन के संपर्क में आती है तो कुछ दाग हो जाते हैं, तो किसान भाई उस

0: के ऊपर, तार के ऊपर लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो फसलें अच्छी फ्रेश दिखेगी। तो सब्जी भाजियों में भी
1: जी।
0: समय समय पे पानी देते रहना चाहिए, जिससे पानी की कमी से पौधों में जो फूल लग रहे हैं वो धूप से गर्मी के कारण नष्ट न हो पाए।
1: जी जी।
0: किसान भाई इस समय धान की कटाई कर रहे हैं, धान की कटाई के उपरांत जो खेत खाली होते हैं उनकी शीघ्र ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं। यदि ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे
1: जी।
0: तो जो अंदर में कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे तेज धूप में, और यदि जुताई नहीं करेंगे तो जो उनके डंठल जड़ों में भूमि में जो जीवाणु रहते हैं वो आगे में आने वाली फसल में नुकसान करेंगे। इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई सभी किसान भाई, विशेषकर जिन्होंने ग्रीष्मकालीन धान लगाए हैं, वो अवश्य करते हैं, जिससे आगे आने वाली जो फसलें जो लगाएंगे उनमें बीमारी के प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकेंगे।
1: और जैसे सिंचाई की बात करें तो अभी समय समय पर सिंचाई कैसे करना चाहिए?
0: सिंचाई किसान भाइयों को प्रातःकाल न करके, या दोपहर में प्रातःकाल करें 4-5 बजे से, या फिर शाम के समय 3-4 बजे से सिंचाई करना चाहिए। वैसे शाम की सिंचाई बहुत फसलों के लिए उपयोगी होती है, इसलिए किसान भाई यदि समय उनको जैसे मिलता है तो शाम के समय में सिंचाई करना चाहिए। जैसे कुछ भाई सब्जी भाजियों में या अन्य फसलों में रासायनिक खाद डालते हैं, यदि हम सुबह में सिंचाई करके यदि खाद डालते हैं तो तेज धूप से नुकसान होने की संभावना रहती है फल फूल में। यदि शाम के समय यदि हम सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, तो रात भर में जो फसलों को जो खाद है वो अवशोषित कर लेंगे और हमारे जो पौधे हैं उनके ऊपर में विपरीत प्रभाव खाद का नहीं पड़ेगा। इसलिए किसान भाई शाम के समय में सिंचाई करें। इस समय में मेड़े खाली है, किसान भाई मेड़ों को साफ कर ले, पूर्व फसलों के अवशेष पड़े हुए हैं खेतों में तो उनको निकाल ले, और खेतों की साफ सफाई करके खेतों इकट्ठा जो कचरा रहता है उसको बाहर फेंक दें। मिट्टी चढ़ाने का काम मेड़ों पे अवश्य करें। अभी अच्छा उपयुक्त समय है, टेम्परेचर हालांकि अधिक है, शाम के समय में किसान भाई जैसी एक दो वर्षा होती है उसके बाद में मेड़ों पे मिट्टी चढ़ा दें, तो जिससे आगामी हम मेड़ों पे जो अरहर की खेती करते हैं उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों को मेड़ पे मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अभी वर्तमान में जो हमारे किसान भाई ये सब कार्य कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे किसान साथियों से?
0: इस समय किसान भाई बीज के लिए, बिल्कुल सीजन आ चुका है, जून लग चुका है, हमें धान बीज की व्यवस्था करनी है। सभी किसान भाइयों को मालूम है और वो लग गए हैं अपनी व्यवस्था में। कुछ किसान भाइयों ने अपना जो खरीफ का बीज है उसको रखे हैं, वो किसान भाई जो रखे हुए बीज को 17% नमक के घोल में निकाल करके और तेज धूप में सुखा देंगे तो जो घर का बीज शुद्ध हो जाएगा और आगे जो फसल बोएंगे तो उसमें बीमारियां कम लगेगी। तो निश्चित रूप से किसान भाई ये 17% वाला नमक घोल, अभी अच्छा टेम्परेचर है, इसका उपयोग करके बीज बना लेंगे। और कुछ किसान भाई हमारे कृषि विभाग से बीज लेते हैं, जैसे इस समय ब्लॉकों में JR 206 और चिन्नौर धान कुछ ब्लॉकों में गया है, तो किसान भाई वहाँ से प्रमाणित फाउंडेशन बीज है, JR 206 फाउंडेशन बीज है, ये ब्लॉकों से उठा लें तो निश्चित रूप से जो आगामी फसल लगने वाली है उसमें फाउंडेशन बीज का, आधार बीज का उत्पादन अच्छा होगा, किसानों को अच्छा लाभ होगा। इस समय प्राइवेट दुकानों में भी बीज आया हुआ है रिसर्च का, और किसान भाई प्राइवेट दुकानों से अधिकांश बीज लेते हैं। किसान भाइयों को एक सलाह दी जाती है

0: कि जो बीज लाते हैं क्योंकि वो चमचमाती बोरियों में रहता है, अंदर में कैसा है वो नहीं दिख पाता। तो सभी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बीज हमने घर में लाए तुरंत 21 दाना जर्मिनेशन के लिए डाल दें, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि हमने जो बीज लिए हैं बाज़ार से उसमें अंकुरण क्षमता ठीक है कि नहीं। यदि 21 दाने में एक दो दाने नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, यदि अधिक दाने में अंकुरण नहीं आ रहा है तो निश्चित उस दुकान में जा कर के उसको बीज को बदल दें और नया बीज दुकान से प्राप्त कर लें। इसलिए किसान भाई जब भी बीज लेता है, क्योंकि अभी समय है, उसको ले जा करके अंकुरण कर सकते हैं, तो निश्चित रूप जो आगामी समय में परेशानियां होती है, हम बीज ले जा लेते हैं और अंकुरण नहीं होता और फिर बाद में किसान को परेशानी होती है। इस किसानों को इस परेशानी से बचने के लिए बीज को अंकुरण करके देखना जरूरी है, चाहे बीज हमारे कृषि विभाग का हो, प्राइवेट दुकान का हो या घर में रखा हुआ बीज है, उसका भी अंकुरण क्षमता को घर में टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद में बीज बोनी करना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने इतनी कारगर जानकारी हमारे सभी सुनने वाले किसान साथियों के लिए दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी लोगों को SR पटले ग्रामीण कृषि अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान साथियों, वर्तमान समय की महती आवश्यकता है कि हम जैविक विधि से खेती करें और खेती को लाभ का धंधा बनाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी भूमि दिनों दिन बंजर और कड़ी होती जा रही है। तो क्यों ना हम जैविक खेती को अपनाएं और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैविक खेती के लाभ और फायदे। और हमारे साथ हैं प्रभात भालेराव सर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बालाघाट से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद है। किसान भाइयों, जैसा कि आज की वर्तमान आवश्यकता है कि हमारे किसान जो जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित है, तो जैविक खेती में जो आपका प्रबंधन है वो आपके पास ही उसके संसाधन उपलब्ध है, और इन संसाधनों में हमारे किसान भाई अगर अपने घरों में इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें, जिन चीज़ों को हम जलाकर या घूड़े में डालकर नष्ट करते हैं, इनको व्यवस्थित रूप से अगर तैयार करेंगे तो जैविक प्रबंधन हम ऐसे बना सकते हैं। इसमें जो बनाने की विधियाँ, जैसे हमारे पास है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होती है वो किसानों के लिए बहुत कारगर है। और इस वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए किसान को 10x5, 10 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचा, इस आकार का जो है एक टाका बनाना पड़ता है, ईटा का। इस टाके में क्या है, आप आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद और या फिर आपके पास जो तत्काल 15-20 दिनों तक इकट्ठा किया हुआ गोबर, मतलब ताज़ा गोबर नहीं चाहिए, ऐसा सड़ा हुआ गोबर आप उसमें टाके में डाल दीजिए। और हमारे विभाग के थ्रू या जो पहले के किसान हैं जिनके यहाँ जैविक खेती होती है, वर्मी टाका है, ऐसे किसानों से आप 2-3 किलो उसमें वर्मी डाल दीजिए। तो ये क्या होगा कि जो वर्मी है वो इस गोबर की खाद को जो है अपना आहार के रूप में ग्रहण करके आपको उस टाके में 60 दिनों के अंदर एक बढ़िया जैविक खाद बना के देंगे। और ये जो जैविक खाद होगी ये आपके खेती के लिए बहुत लाभकारी होगी। अब ये इन सब चीज़ों के लिए जो मटेरियल आपके पास लगा वो आप ही के पास उपलब्ध है, तो आप आसानी से ये, इसके लिए थोड़ी सी 2-3 सावधानियाँ हैं कि किसान भाई जो वर्मी का टाका बनाता है वो छायादार जगह में हो, है ना, और उसके बाद कि वहाँ पे समय समय पे जो है उसकी निगरानी हो, पानी नमी बनी रहना चाहिए, और नमी के साथ साथ उसमें जो लाल वाले कीड़े हैं, चीटे जिसको बोलते हैं, वो नुकसान पहुंचाती वर्मी को, तो उसको जो है नियंत्रण करना पड़ता है। तो ऊपर के भाग में एक नाली जैसे नुमा बना दे और उसमें पानी डाल दे, तो वो जो कीड़ा है बाहर का कीड़ा वो अंदर में नहीं जाता, तो जिसके कारण क्या है कि हमारा जो वर्मी जो है वो सुरक्षित रह जाता है और वो जो प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने वर्मी टाके की जानकारी प्राप्त की, हमारे जो किसान भाई है उनके लिए उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है वो अगर चाहे तो एक और दूसरा तरीका है, बहुत बढ़िया नाडेप विधि से कंपोस्ट बनाना। वो इसलिए हमारे किसान भाइयों के लिए अनिवार्य है कि हम जो घूड़े में खाद बना रहे उसमें 75% जो हमारा हिस्सा रहता है वो असड़ा रहता है, जो सड़ता नहीं, 25-30% जो ये खाद है वो सड़ी

0: हुई रहती है। तो बाकी का जो हम खेतों में डालते हैं उससे हमारे खरपतवार और पैदा होते हैं, क्योंकि वो जो सड़न क्रिया में नहीं सड़ पाते। तो ऐसी पैरा या हमारा जो घर में उपलब्ध कचरा, इसको सड़ाने के लिए एक नाड़े विधि है, और ये किसान बहुत आसानी से बना सकता है। इसको बहुत कम जगह लगती है, 10 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई, 9 इंच दीवार का किसान एक टाका बना ले, और इस टाके में किसान जो है वो अपने घूड़े में इकट्ठा पैरा भूसा जो कचरा है उसको एक एक फीट की जो परत है उसको 3 लेयर में भरना है। तो पहली जो परत भरना है इसमें जैसे सूखे पत्ते हो गए, छिलके हो गए, डंठल हो गए, बारीक टहनियाँ हो गई, अपने घरों में जो वेस्ट में मटेरियल रहता है ये लगभग इसकी मात्रा रहती है 1500 किलोग्राम लगती है, है ना। दूसरा जो है इसमें 100 किलोग्राम गाय का गोबर लगता है, गाय या भैंस का गोबर, इसका घोल बना ले तो ये सड़न क्रिया जल्दी होती है इसमें। और इसमें कुछ मिट्टी लगती है लगभग 1700 किलोग्राम, तो ये जो मिट्टी है भुरभुरी जो मिट्टी है इसको लेयर को दबाने का काम करती है, और पानी जो है इसमें लगभग 2000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो जाए तो हम जो टाका है इसको जो पहली परत भरना है आपको 6 इंच की ऊंचाई तक जो है इन वेस्ट मटेरियलों को भर देना है, उसके बाद गोबर की का घोल डाल देना है, और इस तरह से जो है दूसरी परत में भी गोबर का घोल और पानी और जो वेस्ट मटेरियल ऐसा सब भर के हमको तीनों परत भर देना है। और तीसरी परत जब भर जाए तो चौथी लास्ट परत में इसको झोपड़ी नुमा बना के इसकी लिपाई कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी जो रॉ मटेरियल है ये रॉ मटेरियल में सड़न क्रिया होगी। दूसरा एक और इसमें विशेष बात है कि जब हम टाका बनाते हैं तो इसके चारों ओर होल रखना जरूरी है, इससे हवा का संचार होगा और सड़न क्रिया में तीव्रता होगी। 90 दिनों में किसान के लिए पेवर कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। जो पैरा भूसा हमारे घोड़े में नहीं सड़ता वो पैरा भूसा इस नाड़े टाके के माध्यम से सड़ के तैयार हो जाती है, और इसका भी निजात जो है हमारे किसान भाइयों ने ही तैयार किया है। जो किसान जो है हमारा अगर इसको अपनाता है तो आपके पास जो उपलब्ध मटेरियल है, जो वेस्टेज में मटेरियल है जिसको इधर उधर हम नष्ट करके जला के नष्ट कर देते हैं, ऐसा वेस्टेज मटेरियल से हम 1 साल में 3 बार खाद बना। जैसे कि अभी चर्चाएँ चल रही जैविक खेती की, किसान भाइयों हमने जो जैविक खेती के लिए आपको संसाधन बताया, वर्मी टाका, नाडे, बायोगैस स्लरी भी इसमें आती है, वो भी किसान बना के जो है अपने जैविक खेती का की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा जो कल्चर आते हैं जैसे राइजोबियम कल्चर, एजेक्टोबैक्टर कल्चर, पीएसबी कल्चर, नील हरित सहवाल, और ये सब जो चीज़ें हैं ये भी जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित है। तो हमारे जो किसान भाई है हम उनसे चाहेंगे कि हमारे जो दलहनी फसलें के लिए राइजोबियम कल्चर है इन कल्चरों को बीज में मिला के मिक्स करके बुआई करना है, है ना। ये कल्चर कृषि विभाग के कार्यालयों में भी उपलब्ध है या मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो इनमें जो जीवाणु जो रहते हैं ये क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं पौधों के लिए, है ना। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको पौधों तक पहुँचाने का काम करते हैं इसके बैक्टीरिया जीवाणु। तो ये जो कल्चर है ये भी अब उपलब्ध होने लगे किसान भाइयों के लिए। उसी तरह हम पीएसबी कल्चर इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एजेक्टोबैक्टर कल्चर ये पौधों की जड़ों में स्वतंत्र रूप से रहकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल नत्रजन को अमोनिया में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराता है जी। इससे क्या है कि जो फसल की उपज है वो 10-15% तक वृद्धि होती है।
1: सर आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी प्रदान की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है,
2: रे बेटे।

0: एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।

0: देवाजी रामटेके और साथियों की आवाज़ में ये प्रेरणा गीत था, जिंदगी से भरा हुआ। और इसके साथ ही हम किसान साथियों से इस कार्यक्रम से अनुमति लेना चाहेंगे, लेकिन डालेश्वरी सबसे पहले हम अपने किसान साथियों को ये बता देते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से 5 दिवसीय का मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान मिला है, जिसमें बालाघाट जिले में दिनांक 20 से 24/5/2026 की अवधि में उष्ण लहर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी वाली वेव और गर्म रात की संभावना रहेगी। इस अवधि में अधिकतम तापमान 43 से 43.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28.4 से 29.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह हवा में 50 से 53% तथा दोपहर में 20 से 22% नमी की संभावना रहने हैं संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दक्षिण से पूर्व दिशा में बहने की संभावना है। तो ये मौसम संबंधी सूचना के साथ ही किसान साथियों, आज का किसानवाणी का ये अंक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए नरेश सिंगन धुपे
1: और डालेश्वरी राणा का,
0: और स्वीकारी हम दोनों का नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और बबला मेहता की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में राहत इंदौरी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है करीब।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी अनु मलिक ने। फिल्म का नाम था जानम समझा करो। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम पॉप संगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ पॉप संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस वक्त रात के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्याप्त

0: अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कीजिए। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो की सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

वेडनेसडे के दिन जितने बेहतरीन रहे, उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकला

कर बात करते, एक से तुतला कर तो एक के सामने वो लंगड़ा कर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

0: कहो।
1: खुद पे इतराते न जाओगे?
0: नहीं, खुद पे नहीं।

दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था आप आए बाहर आई। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए पारसमणि फिल्म का ये नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं फारूक कैसर और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में शकील बदायूनी का लिखा गीत, जिसकी धर्मनाई है रवि ने। फिल्म का नाम है दो बदन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का सफर अब खत्म होता है। इस वक्त रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में हम रिले करेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन